0: FM 93.5, FM 93.7, Lakana Radio ITN.
1: हवस तो नहीं बनाते दिस पाए।
2: लुकिया मारे वेड़े ने ऊने, दुक्की के वाले मरे मेमोरी लॉस कीला।
3: मेमोरी लॉस? कौन द डॉक्टर? याद सुन ना दे।
2: मम्मे किरी के बुन्ने हैं या सीनी वेड़े ने मुकुटाते भाई वेड़े करने हैं या माता?
4: Oh my God!
3: सुपरी डॉक्टर ने डॉक्टर हरी तो मुखिया ने दिए नाले
5: हिना वेवी सिंधु हन्ने एफए मानु तुनाई दशमपाह एफए मानु तुनाई दशमहत हैंडे भी हाथर वेदी ट्यून करला त्यागन
6: Even in driving, Chamit and Charu.

सूत्र देशनाव महाकारुणिक बुदुरजानन वहन्से विसिन लोक सत्त्वयावित अनुकंपावेन देशना करन लद आरक्षक परित्राण देशना अतरिन महा समय सूत्र देशनाव अति विशेष वूवकि तारका समूहयक पिरिवरा बेबलिन पूर्ण चंद्रयासे एदा कपिल वस्तु नगरा सन्ने महा वनपित एकालोक करमिन समस्त महा विश्वतलेम बुद्धाज्ञा छत्रयट हसु करमिन पवत्वन लद मे देशना विशेषेन्म सज्जायना किरिन्ने सम्यक् दृष्टिक दिविदेवताउं वहन्सेलागी एल्म बेल्म हा आशीर्वाद्य अपेक्षाविने एदा बुदुरजानन वहन्सेगी श्रीपाद मूलेहि गौरवा विवादन पूर्वकव दस दहसक चक्रावाट्यन सित सपमिने महानुभाव संपन्न दिव्य गणया बुदुरतुन सरण गिय यम पिंवते वेनम ए आय किसीदा अपायगामी वन्नी नटे कियमिन बुद्ध प्रमुख श्रावक संघ रत्नयट स्वकीय अत्यंत गौरवय पुदकलह मेवनाही विश्वगत दिव्य शक्तीन एकराशी करमिन जीवितेत एलेमिन सकलांतराय दुरुकुट सित शांतिय सलसीमेला महोपकारी वन परित्राण धर्मय की सियलु देवियन के आशीर्वादय पिनिस ए महानुभाव संपन्न महा समय सूत्रय सदह सितिन सज्जायने करुण लबन्ने पूज्य गणी कुमरे शांत स्वामी वहन्से।